0: SM Audio.
1: मोनिका क्या कर पाता जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। पावर पावर एजेंट से शुरू होना, एजेंट से खत्म हुई। पावर तो सर क्यों कहाँ से ले ली?
2: फिर वही जवाब बोल रहा।